जय श्री साई राम। आज हम ध्यान देना चाहते हैं एक ऐसे वक्तत्व पर, ऐसी स्टेटमेंट पर जो हम कई बार दोहरा चुके हैं, हमने कई बार अलग अलग शास्त्रों में पढ़ा है। आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एंड माई फादर आर वन। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने इन शब्दों को कहा। वेदांत कहता है दासो अहम, दा को निकाल दिया, सो अहम, सो को निकाल दिया, अहम। शुरुआत कहां से करी? दासो अहम, मैं आपका दास हूं। एक तल और ऊंचा उठे, सो अहम, जो तुम हो वही मैं हूं, जो आप हैं वही मैं हूं, देयर नो डिफरेंस। अहम, आई एम आई, मैं, इसमें कोई द्वैत भाव नहीं है। जब हम कहते हैं दासो अहम, हम कह रहे हैं मैं आपका दास हूं, आप अलग हैं मैं अलग हूं। जब हम कह रहे हैं सो हम, जो आप है वही मैं हूं, जहां भी दो लोग की बात हो रही है। और जब हम कहते हैं अहम, आई एम आई, अर्थात आई, केवल मैं। दूसरी ओर ईसा मसीह ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का दूत हूं, परमात्मा का दूत हूं। दो बातें हो रही हैं, ड्वैलिटी, द्वैत भाव की बात हो रही है। आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, यहां भी दो व्यक्ति की बात हो रही है। आई एंड माई फादर आर वन, यहां पर भी दो लोग की बात हो रही है। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं, हम जो आज चर्चा करना चाहते हैं, पहले हम केवल एक वक्तत्व को, एक स्टेटमेंट को लेते हैं, दासो अहम। हे भगवान, मैं आपका दास हूं। अंग्रेजी में इसको नहीं बोल पाएंगे हम, करीब करीब अगर हम उसको अंग्रेजी भाषा में बोलें, इंग्लिश में बोलें, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। लेकिन दास और सर्वेंट दो अलग चीजें हैं। सर्वेंट कौन है? जो सर्विस करता हो, जो सर्विस प्रोवाइड करता हो, जिस प्रकार से सेवा और सर्विस में फर्क है। सेवा इज नॉट सर्विस। लेकिन करीब करीब शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। आप केवल एक बात सोचिएगा, विचार कीजिएगा एक पल के लिए। आपका अपना व्यापार है, अपना बिजनेस है, आपने किसी को एम्प्लॉय किया, किसी को नौकरी पर रखा। आप कहते हैं ही इज माई एम्प्लॉई, ही वर्क्स फॉर मी।

मेरे लिए काम करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज माई सर्वेंट, लेकिन सर्वेंट शब्द बोलते हैं लोग समझते हैं सर्वेंट का अर्थ है नौकर, और थोड़ा नीच जाति की अनुभूति हो जाती है एकदम से, अहंकार को ठेस पहुंचती है। लेकिन जब हम कहते हैं आई एम द पब्लिक सर्वेंट, मैं समाज का नौकर हूं या समाज का सेवक हूं, आई एम द गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं सरकार के लिए काम करता हूं, नौकरी करता हूं। लेकिन अगर आपके लिए कोई काम करता है, अगर आपका ये सर्वेंट है या आप सर्विस में हैं, आप नौकरी में हैं, चाहे आप बैंक में करते हों या सरकारी दफ्तर में, ये सर्वेंट, ये सर्विस, आप अपने एम्प्लॉई से, अपने कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद रखेंगे? What do you expect from your employee? पहली बात, जो सर्वेंट है या जो एम्प्लॉई है वो ओबीडियंट हो, फेथफुल हो, सिंसियर हो, रिस्पेक्टफुल हो, डिसिप्लिन हो। ध्यान दीजिएगा, आप नहीं चाहेंगे कि आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में जो आपके लिए काम करते हैं वह व्यक्ति समय पे आए, समय पे जाए, सुबह लेट ना हो, शाम को घर जाने की जल्दी ना हो, क्या आप नहीं चाहेंगे? अवश्य। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके लिए जो काम करता है वो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो? विचार कीजिएगा, उत्तरदायित्व समझता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो, आप सब चाहेंगे। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं दासो अहम, मैं आपका दास हूं। दास की व्याख्या करना बहुत कठिन है। मैं कृष्ण की दासी हूं, मीराबाई कह सकती हैं, राधा कह सकती है, रुक्मणी जी कह सकती हैं, गोपियां कह सकती हैं। सर्वेंट जो होते हैं, जो सर्विस में होते हैं, जो एम्प्लॉई होते हैं, वो आपके लिए एक समय काम करते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, आपके नौकर नहीं है। नौकर भी हो तब भी आप उनसे उतना ही काम ले सकते हैं जितना काम आपको लेना है, जितना एक लेजिमेट है। लेकिन जब हम कह रहे हैं दास, पहले जमाने में क्या होता था, राजाओं के दास होते थे। दास मतलब फुल टाइम सर्वेंट हो गया आपका, 100% 24 hours a day, 7 days a week। आपकी प्रत्येक इच्छा, आपके प्रत्येक बात को मान रहा है, जो आप कहे वही करेगा, वो दास हो गया। दास आपसे प्रश्न नहीं करेगा, आप केवल ऑर्डर देंगे, दैट्स ऑल। समझिए बात को। दूसरी ओर, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको कुछ कहा जाए करने के लिए, आपको सही ना लगे, आप बोल सकते हैं दिस इज रॉन्ग। लेकिन जरा एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जहां आप नौकरी करते हैं, दास की बात फिलहाल रहने देते हैं, फॉरगेट अबाउट दास फॉर द टाइम बीइंग। आप जहां नौकरी करते हैं, आर यू फेथफुल? क्या ऐसा नहीं होता लोग अपने ऑफिस में जाके ऑफिस के फोन से बाहर किसी को मोबाइल फोन में फोन करके गप मारते हैं? आप अपनी पर्सनल बातें
ऑफिस के फोन पे

प्रिय पिलारे पैसा कोई और दे रहा है फोन के लिए आप नहीं दे रहे हैं वो फोन इसलिए रखा गया ताकि ऑफिस के काम के लिए यूज हो उस प्रयोग में आए ऑफिस में जाके अपनी फोटोकॉपिंग कर रहे हैं सोचे चलो चार पेज तो है पांच पेज तो है किताब ही किताब फोटोकॉपी कर लिए ऑफिस में घुसते ही 8:30 बजे चाय पीने की तलब लग गई सारा टाइम जो है खाने पीने में व्यतीत कर दिया ऑफिस के रिसोर्सेज अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिए पुट इट दिस वे ऑफिस के रिसोर्सेज आपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर लिए लेकिन आपको तनख्वाह मिल रही है काम करने के लिए इज इट राइट और रॉन्ग आप निश्चित करेंगे निश्चित आपको करना होगा दूसरी बात क्या आप अपने एम्प्लॉयर को वो इज्जत देते हैं रिस्पेक्ट देते हैं क्या ऑबिडियंट है डिसिप्लिन है अगर हम भगवान को बोलते हैं दासो अहम मैं आपका दास हूं जस्ट इमेजिन जस्ट थिंक इट ओवर व्हाट डज द गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज डिवोटीज फ्रॉम हिज दास भक्त नहीं दास डिवोटी नहीं सर्वेंट क्या भगवान नहीं चाहेंगे कि हम ऑबिडियंट हों फेथफुल हों सिंसियर हों कभी आपने सोचा है हजारों बार हम मंदिर गए हजारों बार हमने गुरुद्वारे के चक्कर लगाए हजारों बार हम मस्जिद गए गिरजाघर गए तीर्थों पे गए साधु संतों के हमने दर्शन किए उनको मिले लेकिन हम मंगता बन गए कि सारा टाइम मांगते रह गए भिखारी बन गए आप मंदिर में जाइए नहीं फर्क पड़ता आपने कौन सी घड़ी पहनी है नहीं फर्क पड़ता आपने सोने की चेन गले में डाली है अलग बात है कि उसको शर्ट से बाहर निकाल रखी है ताकि दुनिया देख पाए नहीं फर्क पड़ता आपने सूट पहना है टाई बांधी है अच्छे से अच्छे कपड़े पहने महंगी से महंगी गाड़ी में बैठ के आए हैं आप ये भी हो सकता है महंगा से महंगा प्रसाद लेकर आए हैं भगवान के लिए महंगे से महंगे चीजें लेके आए मंदिर में दान करने के लिए लेकिन मन के भीतर क्या चल रहा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मन के भीतर भगवान के आगे झोली फैलाई हुई है मांग रहे हैं Isn't it amazing? बचपन से लेके मृत्यु तक जन्म से लेके मृत्यु तक हम परमात्मा से केवल मांग रहे हैं क्या हम ये नहीं कह सकते कि दास हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल दास को अपना उत्तरदायित्व मालूम हो क्या हम परमात्मा के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे विचार कीजिएगा भगवान ने आपको हवा दी क्या उसको हम वेस्ट नहीं कर रहे पोल्यूट नहीं कर रहे खराब नहीं कर रहे प्रदूषित नहीं कर रहे भगवान ने आपको जल दिया क्या उसे हम दूषित नहीं कर देते भगवान ने आपको हजारों वृक्ष दिए क्या हम वृक्षों को काट के उनके वातावरण को कमजोर नहीं कर रहे एक साइंस का सब्जेक्ट है इकोलॉजी

वो बताता है कि भाई संसार में सब कुछ बैलेंस्ड है। अगर आप बिल्लियां मार देंगे, किसी गांव में जाके सारी बिल्लियां मार दी, वहां चूहे बढ़ जाएंगे। वहां के चूहे मार देंगे तो मच्छर बढ़ जाएंगे। ये बैलेंस्ड है। प्रकृति अपने आप को संतुलित रखती है। कहीं पर बर्फ दी, कहीं पर बरसात दी, कहीं पर पानी दिया, कहीं धूप दी, कहीं छांव दी, अपने आप को बैलेंस करके। क्या हम परमात्मा के रिसोर्सेज जंगलों को काट काट के जला जला के वेस्ट नहीं कर देते? क्या आप जीव जंतुओं की हत्या नहीं कर देते अपने पेट के लिए, अपने स्वाद के लिए? सोचिएगा जरा आप। क्या भगवान हमसे नहीं चाहते होंगे कि हम अगर उनके दास हैं तो सबसे पहले हम उत्तरदायित्व को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें? क्या भगवान नहीं चाहते होंगे हम फेथफुल हों, सिंसियर हों अपनी अप्रोच में? क्या वो नहीं चाहेंगे हम औरों की इज्जत करें, परमात्मा की इज्जत करें, रेस्पेक्टफुल हों टुवर्ड्स हिम? फिर हम कहते हैं दास हो हम, मैं आपका दास हूं बाबू, मेरा कल्याण करो। एक तरफ कह दिया मैं आपका दास हूं, फिर कह रहे हैं मेरा कल्याण करो। क्योंकि मैं दास हूं इसलिए मांग रहा हूं। जब दास है तो आपके मांगने की, जब अगर आप दास है तो आपका मांगने का राइट खत्म हो गया। ही विल गिव यू वट एवर यू नीड, नॉट वट एवर यू नीड, वट आर योर नीड्स, सफिशियंट एंड नेसेसरी नीड्स। तो परमात्मा का दास कौन है? दास हो अहम, मैं आपका दास हूं। कौन है दास? हनुमान जी। पूरी दुनिया त्याग के भगवान राम के चरणों में बैठ गए। जो भगवान राम ने कहा वही वाणी है, वही सत्य वाणी है। क्या सोचते हैं आप? तो हम ये नहीं कह सकते हम दास हैं, हम दासों हम नहीं कह सकते। जब परमात्मा के दास है, पहली सीढ़ी वही नहीं है तो आगे क्या खाक बढ़ेंगे? ईसा मसीह ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का दूत हूं। परमात्मा के संदेश को आगे लेके आए, सबको बताया। आप भी कर सकते हैं। आपने भी शास्त्र पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं, कथाएं सुनी हैं, गोष्ठियां में सम्मिलित हुए हैं। परमात्मा के मैसेज को जब आगे जाके आप बोलते हैं, उनकी वाणी को आगे जाके बोलते हैं, वह किसी पर असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट इन प्रैक्टिस। जिस बात पे हम खुद नहीं चल रहे हैं, बोलने के हमेशा सच बोलो, दुनिया का बता रहे हैं, सिखला रहे हैं, लेकिन खुद झूठ बोल रहे हैं, वो वाणी दूषित हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। वो ज्ञान भी पूरा दूषित हो जाता है। उस ज्ञान का क्या फायदा जो आपके जीवन में परिवर्तन ना ला पाए? उस ज्ञान का क्या फायदा जो आपको परमात्मा से दूर ले जा रहा हो?

0: केवल इतना सोचना है कि मगर मैं परमात्मा का दूध बनता हूँ, परमात्मा का दास बनता हूँ, दूध से पहले दास बनिए। What are the responsibilities? What are the duties of the das? ये आपको सोचना होगा। सोच के आप अगले कदम पे चलेंगे। सो हम जो आप है वही मैं हूं। कभी आपने विचार किया कि आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, नौकरी के लिए आपका हस्ताक्षात्कार हो रहा है और जो आपसे इंटरव्यू कर रहा आदमी पूछता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम टुडे। आप अपने आप को अगले 5 साल में कहां देखते हैं? आप नौकरी के लिए गए, आपसे पूछेंगे 5 साल में क्या करना चाहते हैं? अगर आप बोलते हैं बस मुझे नौकरी मिल जाए बस काफी है, बस आई विल बी हैप्पी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। वो सोचेंगे आप कुछ करना चाहते नहीं, खाली बस टाइम पास करना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं 5 साल के अंदर मैं प्रगति करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक ओवर योर पोजिशन, आई वॉन्ट टू बी इन योर पोजिशन और आई वॉन्ट टू बी इन ए पोजिशन एज योर्स, मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं, उस तल तक पहुंच जाऊं जहां आप खड़े हैं आज, मेरी प्रगति हो, मेरी उन्नति हो। इसका मतलब है सो हम जो आप है वही मैं हूं। मेटीरियल लाइफ के अंदर, इस भौतिक वातावरण में, भौतिक संसार के अंदर हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, एक हम रोल मॉडल लेते हैं, एक आइडियल लेते हैं, एंड वी वॉन्ट टू बिकम दैट। जो बच्चा क्रिकेट खेलता हो बोलेगा आई वॉन्ट टू बिकम सचिन तेंदुलकर। शास्त्र कहते हैं एक रोल मॉडल है राम, बिकम लाइक राम। सो हम, ईसा मसीह ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। अर्थात जो गुण परमात्मा के भीतर है वो मेरे भीतर भी आने चाहिए, बिकॉज आई एम हिज सन। अपने आप को एक लेवल और ऊंचा उठा लिया। ईसा मसीह ने कह दिया आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। अर्थात अपने आप को इतना स्ट्रांग लेवल पे ले आए, ऊपर एक लेवल और ऊपर उठ गया, एक ताल और ऊपर चले गए। वेदांत कहता अहम, आई एम आई, मैं हूं बस। जब हम बारंबार कहते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द आत्मा, उसका मतलब ये आई एम आई। आई एम आत्मा कहना भी गलत है, मैं और आत्मा तो लाल अलग दिखते हैं। फिर विचार जरा कीजिएगा आप, यहां से आगे बढ़ेंगे हम अगले सप्ताह, फिर प्रयास रहेगा। जय श्री साईं राम।
1: जिस

0: ஆலயம் நியூசிலாந்து இந்து கோயில் சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும் வாராந்திர ஆன்மீக நிகழ்ச்சி ஆலயம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் காலை 8:30 முதல் 104.6 பிளானட் எஃப்எம் அலைவரிசையில் உங்களை மகிழ்விக்க வருகிறது ஆலயம். எங்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்க மறவாதீர்கள்.
1: पंजाबी मेरी जान वर्गी, पंजाबी मेरी पहचान वर्गी, पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी, पंजाबी निरे खुदा वर्गी, पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी, पंजाबी कोरे जवाब वर्गी, पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी, पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी, पंजाबी सजना दे नां वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी। भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी। सुनते रहना प्रोग्राम नचता पंजाब हर मंगलवार की शाम 3:15 तो लेके 4:45 तक। बने रहो नचता पंजाब की टीम अमरीक जी ते रीना सिंह के नाल। धन्यवाद जी। नचता पंजाब 104.6 प्लैनेट एफएम ते ऑनलाइन सुनने लई www.planetaudio.org.nz/nachtapanjab।
2: Ravi Grover will be back next Sunday morning at 7:15 with the teachings of Satya Sai Baba for our Hindi listeners. If you'd like to listen to the Satya Sai Baba programs again, go to our website planetaudio.org.nz and click on Gujarati or Hindi. In a few minutes, Krishna Kanta Devi Dasi joins us on the weekly program Krishna Consciousness at 7:50.
3: Property Matters, proudly brought to you by Barfoot & Thompson.
4: Join me, Stephen Dello, every Monday at 4:15 as we chat all things property, investment and leadership. Hear from the experts aimed at landlords, tenants and business leaders and get inspired on your own investment or career journey. Property Matters, Mondays at 4:15 here on Planet FM or download from your favourite podcast site.
3: Property Matters.
5: ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਮਿਟਾਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫਰਾਈਡੇ 11:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 104.6 ਪਲੈਨਟ ਐਫਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ।
6: Auckland Council has a goal of zero waste to landfill by 2040. That means recycling, composting, reusing and repurposing materials. Here's another zero waste tip on Planet FM. Batteries and electronics should never be disposed of in your curbside bins. Batteries can be taken to many Bunnings and Mitre 10s and community recycling centres offer occasional free e-waste collection days. Check the council website for more information on how to safely dispose of these items and other hazardous materials. A total of 147,000 tonnes was saved from landfill services in 2024. Find out all the info at